ओम श्री नरेन भगवान की जय। श्री देवपुरीषा महादेव की जय। श्री विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमात्मा स्वयं ईश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: ओम श्री दीप नरम भगवान
1: की जय।
0: श्री मांगीलाल जी
1: की जय।
2: श्री दीप नरम भगवान की जय।

की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु मंदिर श्री स्वामी जनंद गुरुदेव की जय। श्री अर्कपुरी जी भगवान की जय।

0: श्रीदीप नरम भगवान की
1: जय।
0: जय। श्रीदीप नरम भगवान की जय। स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: देवा।

प्रमुञ्चधन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्जां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षशतेषु धे

नमो नमः क्षत्रभ्यः संग्रहीतर्भ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुला

भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तयानो मृदजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयत्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नश्यमसत्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृदानो रुद्रोतनो मयस्कृदि क्षयत्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्चमनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमा

0: हम सब दास प्रभु शरण परायणम. सिक्स सो
1: कंटिन्यू
0: अब पोकरा फाइव टाइम्स मोर
1: ऐसे पेज करात.

and in the brain. It will come again. That is how to talk about yoga, what this, and what is a space. Space, horizon. So when someone tells you what is the horizon, where is the horizon, only we can tell answer. The horizon is that far I come close, that element it goes there further. That's it. So don't think that I will be now by my great my friend, hello my dear, oh my brother, hey my sister, hey my father, hey my ma, or hey my husband, and your wife. She said, I will not. And I said, no, you are killing, but one day. फिर कहते मैं कहाँ जाऊँ मारी वो कटेगी ओ यस दैट्स व्हाई लाइफ बिकॉज वी आर द ह्यूमन वी शुड नो दैट दैट्स इट अदर्स दे नो दे हैव लर्न गॉड हैज गिवन एग्जैक्टली सो दिस वन सीड गोज इन अर्थ स्प्राउट्स इट्स कम्स अप flowers, and then now very nice leaves, it will fall down, new will come again. The same thing like humans and this, everything. But more is to there. Patta tuta del se le gai pavana udai. Ab ke bichare kab mila. पता कहाँ मिलेगा कहाँ जाएगा आज हम हैं सभी साथ में वी आर ऑल हियर एंड वी विल बी टू अवर होप वी होप बट इट कैन बी दैट वन पर्सन इन अ नाइट वी विल बी नॉट एनी मोर देयर जीव पक्षी जाता है वो पक्षी रे नहीं हरिओम प्रैक्टिस एंड ट्राई टू कैच हॉरिजेंट एंड हाउ टू गेट द हॉरिजेंट टुमारो आई विल टेल यू हरिओम दीप नारायण भगवान की Now the boys come. They are coming, the students. Oh.

0: come a little back. Thought of. मेरे पप्पी से आओ या मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा. हमारे मास्क निकाल दो. साइड करो स्लो. थैंक यू.
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय. देवेश्वर महादेव की जय.
0: थोड़ा दूर है.
2: हिंदुम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय.
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om

वन डे माता पार्वती सैद टू शिव जी, यू आर गॉड ऑफ गॉड, बट एवरी टाइम यू आर मेडिटेटिंग, हु इज योर गॉड? शिव जी सैद, माई गॉड इज माई गुरु।

0: पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परिभजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय वाह।

एंड ड्रिंक एंड देन इट इज द इतना है वो उस आदमी और वो ऐसे है उनका दुख उनका वो उसका दुख बहुत है वो उसका दुख बहुत है क्या करें यस yes?

ओम शलक पुरज महादेव की जय। देवादेवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधव आनंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर।

0: स्वामी श्री अनंत बोध चैतन्य जी महाराज की
1: जय।
0: हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
2: महामंडलेश्वर श्री पूज्य स्वामी तात्पुरी जी महाराज की
1: जय।